0: की ताजगी का सफर तय कीजिए। यूसीपी की दुनिया के साथ, तो सुनते रहिए
1: سيد الأولين والآخرين
0: FM 92.6.

वही तो है जो तुम पर रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि तुमको अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाए, और खुदा मोमिनों पर मेहरबान है।

0: उसमें अबदुल आबाद रहेंगे, न किसी को दोस्त पाएंगे और न मददगार।
1: यौम तुकल्लबु वुजूहुहुम फिन नार यकूलून या लैतना अतअना अल्लाह व अतअना रसूला।
0: जिस दिन उनके मुंह आग में उलटाए जाएं, कहेंगे ऐ काश हम खुदा की फरमाबरदारी करते और रसूल खुदा का हुक्म मानते।

0: और कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपने सरदारों और बड़े लोगों का कहा माना तो उन्होंने हमको रस्ते से गुमराह कर दिया।
1: ऐ
0: हमारे परवरदिगार, उनको दुगना अजाब दे और उन पर बड़ी लानत कर।

पूछो कि तुमको आसमानों और जमीन से कौन रिस्क देता है, कहो कि खुदा, और हम या तुम या तो सीधे रास्ते पर हैं या सरीह गुमराही में।

वो कहेंगे तू पाक है, तू ही हमारा दोस्त है, न ये, बल्कि ये जिन्नात को पूजा करते थे और अक्सर उन्हीं को मानते थे।

शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसे दुश्मन ही समझो। वो अपने पैरवों के गिरोह को बुलाता है ताकि वो दोजख वालों में हों।

0: हूद,
1: क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ने आसमान से मेवे बरसाया तो हमने उससे तरह तरह के रंगों के मेवे पैदा किए, और पहाड़ों में सफेद और सुर्ख रंगों के कतआत हैं और बाज काले स्याह हैं।
0: ومن الناس والدواب والأنعام

ख्वाही करेगा वो अपने ही लिए भलाई करेगा, और जो शख्स मेरे कासदों की अतात और उनके हुक्म की पैरवी करे उसने मेरी अतात की, और जो उनके साथ खैरख्वाही करे उसने मेरे साथ खैरख्वाही की, और मेरे कासदों ने तुम्हारी अच्छी तारीफ की है, और मैंने तुम्हारी कौम के बारे में तुम्हारी सिफारिश कबूल कर ली है। लिहाजा मुसलमान जिस हाल पर ईमान लाए हैं उन्हें उस पर छोड़ दो, और मैंने खताकारों को माफ कर दिया है, लिहाजा उनसे कबूल कर लो, और जब तक तुम इस्लाह की राह इख्तियार किए रहोगे हम तुम्हें तुम्हारे अमल से मौजदिल ना करेंगे, और जो यहूदियत या मजूसियत पर कायम रहे उस पर जजिया है। हौजा बिन अली साहिबे यमामा के नाम खत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौजा बिन अली हाकिमे यमामा के नाम हस्बे ज़ेल खत लिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से हौजा बिन अली की जानिब, उस शख्स पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरा दीन ऊंटों और घोड़ों की रसाई की आखिरी हद तक गालिब आकर रहेगा, लिहाजा इस्लाम लाओ सालिम रहोगे, और तुम्हारे मातहत जो कुछ है उसे तुम्हारे लिए बरकरार रखूंगा। इस खत को पहुंचाने के लिए बहसियत कासिद सलीत बिन उमरु आमरी का इंतखाब किया गया। हजरत सलीत इस मोहर लगे हुए खत को लेकर हौजा के पास तशरीफ ले गए तो उसने आपको मेहमान बनाया और मुबारकबाद दी। हजरत सलीत ने इस खत को पढ़कर सुनाया तो उसने दरमियानी किस्म का जवाब दिया और नबी की खिदमत में ये लिखा कि आप जिस चीज की दावत देते हैं उसकी बेहतरी और उम्दगी का क्या पूछना, और अरब पर मेरी हैबत बैठी हुई है इसलिए कुछ कार परदाजी मेरे जिम्मा कर दें, मैं आपकी पैरवी करूंगा। इसने हजरत सलीत को तहाइफ भी दिए और हजर का बना हुआ कपड़ा भी दिया। हजरत सलीत तहाइफ लेकर खिदमत नबवी में वापस आए और सारी तफसीलात गोश गुजार की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खत को पढ़कर फरमाया, अगर वो जमीन का एक टुकड़ा भी मुझसे तलब करेगा तो मैं उसे ना दूंगा, वो खुद भी तबाह होगा और जो कुछ उसके हाथ में है वो भी तबाह होगा। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का से वापस तशरीफ लाए तो हजरत जिब्रील ने खबर की कि हौजा का इंतकाल हो चुका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, यमामा में एक कज़्ज़ाब नमूदार होने वाला है जो मेरे बाद कत्ल किया जाएगा। एक कहने वाले ने कहा, या रसूल अल्लाह, उसे कौन कत्ल करेगा? आपने फरमाया, तुम और तुम्हारे साथी। और वाकयतन ऐसा ही हुआ। सामिन, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे में आप सुनेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसके बाद सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।

0: न्यूज। मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
1: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
2: आरजे फाद कुरैशी।
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
4: ओनली ऑन वन प्लेस।

0: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है। इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है, लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
1: द आवाज दे द लाहौर, द आवाज दे द यूसीपी, नो आवरे FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: Broadcasting University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.

0: एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6 UCP की दुनिया।
5: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
3: पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1,
2: UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

0: मैं काम करके थक जाती हूँ।
1: उस्ताद जी मुझे जरा सी गलती पर बहुत मारते हैं।
2: क्या कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र इनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की है? इन पर काम का बोझ ना डालें, इनसे इनके ख्वाब इनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। 14 साल से कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना एक काबिल सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मशक्कत से इनकार करें। बच्चों से मशक्कत की इत्तला देने के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप 1099 पर राब्ता करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

WHO की हालिया तहकीकात के मुताबिक पूरी दुनिया में 2.2 बिलियन अफराद आंखों के मसाइल से दोचार हैं। लिहाजा आप भी एहतियाती तदाबीर अपनाकर अपनी आंखों की हिफाजत कीजिए। अपनी आंखों को गर्दो गुबार और आलूदगी से बचाएं। कंप्यूटर पर काम करते हुए मुसलसल आंखें कंप्यूटर पर मरकूज ना रखें। आंखों का बाकायदगी से मुआयना करवाएं। बच्चों को नोकीली चीजों से हरगिज न खेलने दें। मोबाइल के बेजा और मुसलसल इस्तेमाल से गुरेज करें और घर आते ही फौरन आंखों को ताज़ा और ठंडे पानी से धोएं। इसके अलावा खाने में मुतवाजन गजा और विटामिन ए से भरपूर खुराक इस्तेमाल करें। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से पेश किया जा रहा है।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया और प्रोग्राम जावेद जिंदगी में। अली अजबत फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था सर से, क्वेश्चन करेंगे कि इंसान अपनी आखिरत क्यों भूल चुका है। सर इसका जवाब आप खुद ही दे रहे।
2: अच्छा अब देखो, इंसान अपनी आखिरत क्यों भूल चुका है, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है अजबत बच्चे कि हम जिसको दफन करते हैं हम ये समझते हैं शायद इसने मरना था। अपने हाथों से जिसको दफन किया होता है हमें उस वक्त भी ये ख्याल नहीं आता कि यार मेरी भी बारी, इसकी जगह मैं भी हो सकता था। ये जिसको मैं कब्र में उतार रहा हूँ इस वजूद की बजाय यहाँ पे मेरा वजूद हो सकता था और कोई दूसरे हाथ उसको कब्र में उतार रहे होते। जैसे ही हम उसको दफना के वापस अपने घरों की तरफ लौटते हैं हमारे ऊपर दोबारा से वो जो दुनिया है, वो जो जिंदगी है, जो जिंदगी की ख्वाहिशें हैं, जो जिंदगी के मुतालबे हैं हमारे ऊपर, वो दोबारा से उनकी वारदात होती है और वो हमको डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। ये जो लेकिन आपको जो सवाल है ये बड़ा पर्टिनेंट है। आज का जो दौर है, आज की जो यूथ है, आज की जो नौजवान नस्ल है, इसको अगर कंपेयर किया जाए 2000 से पहले वाली नस्ल से तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है।
1: इनोवेटिव
2: आज की जो नस्ल है, उस नस्ल के अंदर जो स्टेटस ओरिएंटेशन है जिंदगी के अंदर, पहनावे के अंदर, बोलने के अंदर, मोबाइल्स हैं, मोबाइल के अंदर जब तक अब देखो वो खाना खा रहा है और खाना खाते हुए जब तक वो उसकी एक सेल्फी लेके स्टेटस नहीं लगाता कि मैं ये खा रहा हूँ, उसको तस्कीन नहीं होती। अच्छा उसने कोई ब्रांड की चीज खरीद ली है, जब तक वो लोगों को नहीं दिखाएगा कि मैं ये हूं तो क्या होगा, वो तब तक उसको मुतमिन वो नहीं होगा। तो मतलब कि जब आपकी महवर और मंजिल जो है वो दुनिया होती है, मादी जरूरतें होती हैं, और आप इस मादी जिंदगी को ही अपनी हमेशा हमेशा की जिंदगी समझना शुरू कर देते हो। आप ये कहते हो कि 4 दिनों की जिंदगी है, ठीक है, और इन 4 दिनों में मैं वो सारा कुछ कर लूं जो पता नहीं दोबारा मिलना है कि नहीं मिलना।
1: सर तो
2: अब यहाँ पे जो एक चीज है वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर जिंदगी के कुछ निजाम होते हैं। बचपन एक आपका है, उसका एक अपना निजाम है जिसमें शरारतें हैं। बचपन है जिसके अंदर आप ये कह सकते हो आसूदगी है। बचपन है जिसके अंदर मासूमियत है, जो गुनाहों से पाक एक मुअत्तर आपकी उम्र होती है। उसके ऊपर आप अगले सिस्टम पे आ जाएं, अगले मरहले पे आप जवान हो जाते हैं। कम सनी की उम्र से निकल के आप जवानी में आ जाते हैं। जवानी चिंचलाती हुई धूप की तरह होती है। वो दिन जो गर्मियों का दिन और जून का महीना हो, और जून के महीने में जो 2 बजे सूरज जिस नहज पे होता है, जवानी उम्र का वो हिस्सा होता है जहाँ पे हल्की सी बात पे आप अग्रेसिव हो जाते हैं, हल्की सी बात पे आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, और उसके बाद जो उम्र का हिस्सा आता है वो आपका बुढ़ापा है, और बुढ़ापे के अंदर फिर थकावट है। बुढ़ापे के अंदर सुरमई शाम जैसे होती है, उस शाम की सी थकावट है, मैलापन है, और उसके बाद अगली मंजर आपकी जो है वो बुढ़ापे के बाद, इस जिंदगी के बाद वाली जिंदगी जिसको हम बरज़ख या कब्र कहते हैं, वो वाली जिंदगी है। तो इस जिंदगी के अंदर रहते हुए इसके कुछ मुतालबे हैं। आप नौजवान हैं, जवानी के कुछ तकाजे हैं, कुछ मुतालबे हैं। जवानी का मुतालबा ये है, अभी इन दोनों में आपने फर्क समझना है। जवानी ये मुतालबा कर रही है कि जवानी फिर नहीं आनी, लिहाजा जो कुछ मैं कर सकता हूं मैं कर लूं, मूवीज देख लूं, पार्टीज कर लूं, और जो भी मेरे अंदर जायज नाजायज ख्वाहिशें पैदा हो रही है मैं उनको हासिल कर लूं, क्योंकि ये मेरी उम्र है करने की। अच्छा एक इस उम्र का तकाजा है, तकाजा क्या है कि वाक्यतन जवानी फिर नहीं आनी, वाक्यतन मेरी आंखों में ये रोशनी इतनी शदीद नहीं रहनी जितनी आज है, वाक्यतन मेरे दिल की धड़कन इसी तरह से पूरे जिस्म को ब्लड नहीं प्रोवाइड करेगी जितनी आज कर रही है, जितनी तवानाई आज मेरे बाजुओं में है, जिस तरह से आज मेरे फेफड़े और जिस्म के अजाब काम कर रहे हैं, अब हर गुजरते दिन के साथ इनकी ताकत और तवानाई में कमी आनी है। लिहाजा तकाजा ये है कि आज मैं इस ताकत को, इस तवानाई को ऐसे कामों पे सर्व करूं जो आने वाली जिंदगी में मेरे लिए आसूदगी का बायस बने, ये तकाजा है। मुतालबे जो होते हैं वो हमेशा हार जाते हैं, तकाजे जो होते हैं वो हमेशा जीत जाते हैं। लिहाजा इंसान की जो जिंदगी होती है ये अब आपने खुद डिफाइन करना है। वो बच्चे जो इस सिस्टम से निकल जाते हैं, वो बच्चे जो ये सिस्टम है, इस उम्र का सिस्टम की ख्वाहिशें हैं, पार्टीज ब्ला ब्ला ब्ला जो हमारे बच्चे कर रहे होते हैं, इस सिस्टम से जो निकल गया वो फ्लॉप आ गया। इस सिस्टम से जो निकल गया उसने उस जहान के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया जिसकी तरफ आपने सवाल में शुरू में इशारा किया था कि हम भूल क्यों गए हैं। अगर तो हम जिंदगी के तकाजों को मद्देनजर रखेंगे तो आखिरत हमें हमेशा याद रहेगी, और अगर हम जिंदगी के मुतालबों पर रहेंगे तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले।
1: क्या बात, आपने बताया कॉम्प्लेक्स्ड, हम कॉम्प्लेक्स्ड हैं, हम कल्चर मतलब हम उस तरह चीजों को नहीं ले रहे, हमारा सिर्फ ये मकसद है कि हम दूसरे को देखते हैं कि उसने इस तरह की चीज ली है तो हमारे पास क्यों नहीं है मौजूद, या एक दूसरे से कंपटीशन भी है, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, सब चीजें मौजूद हैं। तो आप क्या समझते हैं इसकी वजूहात में क्या इनोवेशन हैं, मतलब टेक्नोलॉजी जो नई आ गई है वो वजह इसकी है, या जो वेस्टर्न कल्चर का फरोग है वो है, क्या समझते हैं कुछ थोड़ा समझे आगाह।
2: इसमें आमतौर पर लोग टेक्नोलॉजी को ना बहुत ज्यादा मजम्मत करते हैं, मोबाइल की या सोशल मीडिया की हर चीज की मजम्मत करते हैं, कभी

0: आप लाख बंद बांधो, आप लाख कहो जी मैंने इस पानी का रास्ता रोकना, ये घरों में घुस जाएगी। यही इंटरनेट था जिसको देख के लोग कहते थे हवा बनाया हुआ था आज से 10 साल पहले, यार फलां के घर में नेट लगा हुआ है, ठीक है, और वो नेट का कोई और ही मीनिंग ले रहे हो।
1: आज हर किसी के घर में नेट,
0: आज हर जहां बैठे हुए इनोवेशन ऑन है, आप बाहर जाओगे वहां पे भी नेट ऑन है, आप यहां बस में बैठोगे वहां पे भी नेट ऑन है। वो चीज जिसको कहा गया ये गलत है, वो चीज गलत नहीं थी, उसने अपना रास्ता बना लिया है हर जगह पे। हाँ, अब करना ये है कि ये जो इनोवेशन है, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसके अपने ऊपर क्या हम टेक्नोलॉजी के लिए हैं या टेक्नोलॉजी हमारे लिए है। हमारा मसला ये है कि हम ये समझते हैं कि हम मोबाइल के लिए हैं, खाना खा रहे हैं तो मोबाइल देखी जा रहे हैं, वो खुदा के बंदे खाना तो
1: अच्छा, हम गुलाम बन गए हैं, गुलाम
0: डिवाइसेस। टेक्नोलॉजी हमें सहूलत देने के लिए आई थी, असल में हम टेक्नोलॉजी को सहूलत देना शुरू हो गए हैं, हमने अपनी नींद को हराम कर लिया टेक्नोलॉजी के लिए। खाना खाते हुए हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के लिए, बच्चों को टाइम नहीं दे रहे टेक्नोलॉजी के लिए, मेरे पास बूढ़े वालदैन बैठे हैं उनके लिए टाइम नहीं है क्योंकि मेरे पास टेक्नोलॉजी है। खुदा के बंदो, टेक्नोलॉजी आपको फैसिलिटेट करने आई थी, टेक्नोलॉजी ने आपकी जिंदगी के अंदर सहूलतें देना थी, इस टेक्नोलॉजी को आपने अपनी जिंदगी में बैरियर के तौर पे ले लिया, और वो रुकावट कहाँ पे बन गई, वालिद और बेटे के दरमियान में रुकावट बन गई, दोस्तों के दरमियान में रुकावट बन गई, और हर सत्ता पे ये जो रुकावटें हैं आपको टेक्नोलॉजी के मद्देनजर रखते हुए आपको
1: बिल्कुल ये रुकावटें चलती जा रही हैं, और हमें इन रुकावटों को एज अ यूथ भी, और जब हम यहाँ पे प्रोग्राम में बात करते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि इसके जितने जो सॉल्यूशंस हैं वो बताएं और इस प्रॉब्लम को एज सून एज पॉसिबल नलीफाई करें, और हम अल्लाह के बारगाह में क्योंकि हमें पेश होना है और हम खूबसूरत बनाएं अपनी जिंदगी को। और अब मैं चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे ब्रेक तो लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद मैं चाहूँगा जो एक और इंटरेस्टिंग रूल है जो कि बेस करता है खिलवत और जलवत पे, उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद डिस्कशन करूंगा, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए FM 92.6 UCB की दुनिया, वी बी राइट बैक।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

मौसीकी के सुरोरताल सुरोरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCP FM 92.6 UCP ki duniya.
1: एक नया अंदाज,
2: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
2: एक नई लगन.
1: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान.
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से.
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की.
2: जहाँ बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP #1
1: UCP #1 जब मिलती है लगन,
2: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस
2: तो बनती है
1: UCP की दुनिया.
3: UCP की दुनिया.
2: आप सुन रहे हैं FM 92.6.
1: सुनते रहिए.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: तो सुनते रहिए FM 92.6 UCT की दुनिया।
1: मौसीकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
2: मस्ती के पास,
1: सिर्फ FM 92.6 UCT की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCP FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: न्यूज़। मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
1: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
2: आरजे फाद कुरैशी।
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज़ बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस।

0: when you are off. Turn on the radio and tune in. FM 92.6 UCP की दुनिया.
1: वसाइल और कुंबे के अफराद में तवाज़ुन, खुशहाल खानदान और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की जमानत है. मुतवाज़न खानदान की तशकील के लिए जिम्मेदारी निभाएं, एतदाल अपनाएं.
2: नशा न परेशानियां खत्म करता है, न इसका जरूर हमेशा रहता है. ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है. बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है. ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो. वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें. हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है. नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार. मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें.

0: अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111877 पर राब्ता कीजिए।
1: Are you tired of feeling lazy and bored?

0: 792.66.
1: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
2: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
3: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
1: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
4: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में

0: आप भी खेल ले।
1: मैं इसके बाद बैटिंग पे जाऊंगा।
0: बाइक चलाना सिखाऊंगा। हाँ
2: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
3: खबरदार, छूना मना है।
4: वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।
5: लिसन, लर्न, डिस्कवर विद रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCB के दिन में।
6: मैं काम करके थक जाती हूँ।
7: उस्ताद जी मुझे जरा सी गलती पर बहुत मारते हैं।
8: क्या कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र इनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की है? इन पर काम का बोझ ना डालें, इनसे इनके ख्वाब, इनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। 14 साल से कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना एक काबिल सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मशक्कत से इनकार करें। बच्चों से मशक्कत की इतला देने के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप 1099 पर रابطہ करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

0: कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.vk पर चेक करें।
1: सुनना है तो इसे सुनो।

0: भी खेल ले।
1: मैं इसके बाद बैटिंग पे जाऊंगा।
0: बाइक चलाना सिखाऊंगा। हाँ
2: बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है, डरे नहीं और चीख के कहें,
3: खबरदार, छूना मना है।
4: वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।
5: Station of the nation.

0: कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.bk पर चेक करें।
1: आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो UCP की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती ही नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

Ladies and gentlemen, we are live now. नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

0: साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
1: खबरदार, छूना मना है।
2: मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।

0: न्यूज। मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
1: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
2: आरजे फाद कुरैशी।
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
4: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111877 पर राब्ता कीजिए।

0: when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ. डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है.
2: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज.
3: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं.
1: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है.
4: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है. इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें. अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें. डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा. याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है.
5: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे. जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं. जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं. जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं. ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं. इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो. अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब.
6: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
7: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
8: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز UCP کی دنیا FM 92.6.